0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Tyler has released a brand new single titled Is It Love? The cut is a part of her upcoming album titled A Pop.
3: You're listening to City FM 89.
7: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम
8: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
7: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
8: शराइत जवाबित लागू है
9: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
3: City FM 89.
10: We're playing your song.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
5: Pura hafta. राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर शरायतो जवाबित लागू हैं
6: IELTS seems difficult? Four sections. Limited time, high pressure.
7: Listening, reading, writing, speaking.
6: Not with AEO Pakistan.
7: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
6: Learn strategies that actually work.
7: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
6: Reserve your spot now at 0320-346-1147 0320-346-1148 Visit now at www.aeo.com.pk
8: Hey duni do do duni char sahi intikhab ke inamat 2500
9: agar aap hain drive car bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke sath 2500 se zyada inamat
8: duni do do duni char
10: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
3: City FM 89
11: Sunlight exposure within 30 minutes of waking helps to regulate your sleep-wake cycle
4: Brought to you by Dettol
12: City FM 89 We're playing your song.
13: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर जहां टेस्टिंग का हर पल होता है कंफर्टेबल स्मूथ और स्ट्रेस फ्री डेली अवेलेबिलिटी नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर AEO पाकिस्तान पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर Book now at www.aeo.com.pk
7: Jazz Cash के साथ पाओ 1 crore जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने Jazz Cash अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए Jazz Cash है ना
8: شرائط و ضوابط لاگو ہیں
5: سری ایف ایم 89 We're playing your song
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: Mornings evolve and so do we.
1: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
7: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
6: The freshest music, the hottest gossip.
1: And the energy Gen Z lives on.
6: It's bold, it's current. It's your new morning routine.
1: The Breakfast Show.
6: Only on City FM 89.
8: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: You're listening to City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
0: We're playing your song.
5: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
7: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
8: पूरा हफ्ता राब्ता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
9: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
10: एक्सपोज योरसेल्फ टू अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. एंड लेट योर वरीज रन फ्री. एक्सपोज योरसेल्फ टू समथिंग यू विल नेवर अदरवाइज एक्सपीरियंस.
11: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
4: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
5: Trending today.
7: Pop star Tyla has released a brand new single titled Is It Love? The cut is a part of her upcoming album titled A Pop.
8: You're listening to City FM
9: 89. MCB One Current Account. हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में जैसे कि फ्री चेकबुक फ्री बैंकर्स चेक फ्री एसएमएस अलर्ट्स फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं एमसीबी बैंक फॉर लाइफ
10: क्या आप जानते हैं की उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
11: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना
12: शराय तो जवाबित लागू है
13: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
14: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
5: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
8: City FM 89.
1: You're listening to
15: The Rush Hour with ABD.
16: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and today we are going to do my favorite segment, History Mystery. So the history mystery that we have today is the $125 million spacecraft that was lost. This happened in 1999. It was NASA's Mars Climate Orbiter. So in 1999, NASA launched the Mars Climate Orbiter to study the Martian atmosphere and climate. Everything seemed fine. Until the spacecraft approached Mars. And suddenly, silence. Absolute pin drop silence. After weeks of investigation, engineers discovered the cause. Now, before I reveal this cause, because I don't want that to just happen, how did this happen? Was it mechanical failure? A launch error? Alien interference? What could it be? Well, you're going to have to stay tuned to find out. So I'm going to send you listen to some music, leave you on a bit of a cliffhanger, and when we come back, I'm going to tell you what caused this history.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing your song.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Hey, duni do do duni cha sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
6: Agar aap hai in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
5: Hey, duni do do duni cha.
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है.

0: Boost your song.
1: Only on City FM
2: 89. This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM
5: 89. MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. Jo de raha hai banking ki beshumar sahuliyat ek account mein. Jaise ke free checkbook, free banker's check, free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB One Current Account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for Life.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
7: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
8: शराय तो जवाबित लागू है.
0: City FM 89 sounds different.
1: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: We are
3: City FM 89. This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: You're listening to City FM 89.
7: Trending today.
8: Pop star Tyler has released a brand new single titled Is It Love? The cut is a part of her upcoming album titled A-Pop.
9: City FM 89.
10: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
11: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी मौका अभी भी बाकी है अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
12: शराय तो जवाबित लागू है
6: You are listening to City FM 89.
13: We are playing your song.
1: You're listening to
14: The

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामा। इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
1: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
2: सिटी FM 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
3: You're listening to

0: Prolong Your Song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz. City FM 89.
1: On the dial.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inamat 2500.
5: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 year earnings ke saath 2500 se zyada inamat.
4: Duni do do duni char.
6: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
7: Pediasure से आईलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर.
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
6: शराय तो जवाबित लागू है.
8: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
1: We're now live on WhatsApp.
8: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
1: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.
11: All right, guys, that is all for today's show. I hope you enjoyed the show today. I hope you had an amazing, amazing Tuesday. As you all know, tomorrow is my favorite day of the week. It is Wednesday, and Wednesday is the best day because it's bang in the middle. I'll see you guys tomorrow. Until then, drive safe, sleep safe, and have a very pleasant day tomorrow. Until I see you.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
2: सिटी एफएम 89।
6: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड।
7: इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ओवरराइड फॉर योर इयर्स।
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
10: Hold on! Special delivery coming through!
11: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
0: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
0: It's as easy as 03142-898989.
11: Save our number now and WhatsApp us.
13: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp. Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight. Only on City FM 89.
0: Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Future Sounds.
1: Future Sounds.
2: Stay fresh, stay lit.
8: New music drops right here.

0: Belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Tyler has released a brand new single titled Is It Love? The cut is a part of her upcoming album titled A Pop.
7: City FM 89.
8: जैज कैश के साथ पाओ एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
9: शराइत जवाबित लागू है।
10: We're playing your song.
6: Sunlight exposure within 30 minutes of waking helps to regulate your sleep-wake cycle.
3: Brought to you by Dettol.
10: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Future Sounds.
12: Future Sounds.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
1: You're listening to
8: Future Sounds.
9: Future Sounds.
10: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist. Stay ahead of the vibe. Future.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: Attention. The standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
4: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
4: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
7: City of M89, we're playing your song.
1: You're listening to
8: Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
2: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: Have you saved our WhatsApp number yet?
7: 031-42-898989.
6: Get in touch over WhatsApp.
8: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.